असल गुरसिख की पहचान इन्हों नेत्रा ने दिखी। इस करके बार बार यही अरदास करदा मैं हमेशा सिख बनना थे पूरे बन जाइए अधूरे ना रहिए। फिर इस जीवन की गति है नहीं तो कोई। भाई साहब के बचन पढ़ लीए

प्राण सखाई हर कीरत हमरी रहरास रहाओ। हर जन के वड भाग वडेरे जन हर हर सरदा हर प्यास हर हर नाम मिला सरपतास मिल संगत गुण प्रगास जन हर हर हर रस नाम।

सैल पत्थर मह जंत उपाए ताका रिजक आग कर धरिया मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरिया गुर प्रसाद परम पद पाया सूके काष्ट हरिया रहाओ जानन पिता लोक सोत बनता कोई न किसकी तरिया सिर सिर रिजक संभा

भगत सलाहन तुझ जी हरे अनक अनेक अनंता तेरी अनक कर है हर पूजा जी तप तप है जप है बेअंता तेरे अनेक पढ़ है बहु सिमरत साच जी।

सम्रत शास्त्र वेद सब बहु भेद कह हम एक न जान्यो। श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं ना कहो सब तो है बखान्यो। दोहरा सकल द्वार

तले महला तीजा आनंद एक ओंकार सत गुर प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर तपाया सहज सेती मन वजिया वाधाइया राग रतन परवार परिया शब्द गावन आईया शब्द तगाव हरि केरा मन जिने वसाया तह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारणा अंगीकार ओ करे तेरा कार्य सब सवारणा सबना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहेबा क्या नाही कर तेरा करता तेरा सब किश है जस देह सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जन का मन वसया वाजे शब्द कनेरे।

गौरी तथा तो समराथ जथा कोय नाह ओथा तेरी राख अग्नि उदर माह सोन का जाम के दूत नाए तेरा छड़ जाए पाओ जल।

मनो न विसारयन साध जना कह संग भव जल तारयन साकत निंदक दुष्ट फैन माह बिदारयन तैसु

सत्संग जी बोलो जी वाहिगुरु वाहिगुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वाज गौरी पाचे दसवीं प्रथम भगवती समर कहे गुरु नानक लई त्याए फिर अंकित गुरते अमरदास रामदास हो सहाय अर्जुन हर गोबिंद नूं सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई थे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमर है कारण निध्यावै ताए सब ताई हुए सहाय दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाई हुए सहाय दसा पाची के पुत्र आत्मक स्वरूप साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब के पारदार अंतर के खालसा से बोलो जी वाहे गुरु। गरीब नवाज आप जी दे पांच प्यारे चार साहबजादे चाली मुक्त हटियां जपिया टपियां जिन्हें नाम जपया वंड चख्या दे चलाई ते वाहे देख निर की तेना प्यार से त्यार नहीं कमाई देते अंतर की बोलो जी वाहे गुरु। जिन्ना सिंगा सिंगणिया धर्मे सी जीते बंद बंद कटवाए खोपड़ियां लुहाइया चरखियां से चढ़े आड़े न चराए गए गुरुद्वार सेवा वास्ते कुर्बानियां कीतिया धर्म नहीं आ रहा सिखी सिद्ध के संग निभाया तिना नहीं कमाई देते अंतर की बोलो जी वाहे गुरु। पंजा तख्त गुरुद्वारा का ध्यान करके बोलो जी वाहे गुरु। प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे नाम चेताव है चित आवण का सद का सर्व सुख हो वह जहां जहां गुरु खालसा साहब तरह चरियाए देव ते की फतेह वृद्ध की पैज पंथ की जीत श्री साहब जी से आए खालसा जी के बोल बाले बोलो जी वाहे गुरु। सिखां नूं सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहब दर्शन स्नान क्योंकि चंदे भूंगे जुग जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु। सिखां दा मन नीवा मत उची मत पत के राखे आप वाहे गुरु। गुरु जी प्रवाज पंथ सदा साहिब दार जी गुरुद्वारा ननकाणा साहब पंजा साहब होर गुरुद्वारे गुरुधाम जिन्हों तो आप जी के पंथ छोड़िया गया दशदार सेवा समाज का दान अपने खालसा जी बख्शो ये नोटिया की ओट गुरु ने आसरिया के आसरे गुरु धन धन गुरु ग्रंथ दार जी दोए कर जोड़ करो अरदास तुद पहावे ताले रास। ये गुरु प्रवाज जी आपके चरण कामला अरदास भी आपने बख्श की है आदि जन पित कुरबानी सुखमी साहब संपूर्ण पाठ दतार ऐसे वे संध्या समय जान के आदि चरण सो दर रहरा साहब पाठ की कृपा करो होइया भुला चुका नहीं माफी बख्शो पढ़ी कुरबानी सोध के सच खंड कुरान कुरबानी का भाव सारिया संगत हिरदय सारी कृपाता करो जी अगो तो शुद्ध पित्र बाणी विचारी मन बुद्धि बख्शिश करो फिर आज इस खुशी में आप दिया बख्शियां दाता पित्र कलाब शादी देखा तैयार कर हजार आप जी भोग लाओ शीत प्रसाद साह संगत की रसना लायक हो जो जी सके स्वास स्वास आप जी का पितर नाम जप बख्शिश करो दतार जी दुखा कलेशा रोगों का नाश करो सुखा का प्रकाश करो देश प्रदेश रखा बख्शिश करो जी गरीब नवाज कृपा करो आप जी मक्षियां दातन गरीब नवाज आपने कृपा की गरीब नवाज नगर की तुर सेवा हो रही है आपने प्रवान करनी आपके चरणा सेवा करते सारे टैलिया सिंगा सिंगणियां तंदुरुस्ती बख्शो चाटी कला बख्शो और सदा ही इस तरह अपने चरणा सेवा की भावनामक कृपालता करो गरीब नवाज अमृत वेर तो लैके दर से आईया सात संगत दर प्रवान करो घड़िया लिखे लाओ संगतों का दर से तिर फुर पेटा प्रवान शुभकामना पूर्ण करो जी गरीब नवाज कृपा करो दतार अमृत वेर तो लैके दर से आईया सात संगत प्रवान करो घड़िया लिखे लाओ संगतों का दर से तिर फुर पेटा प्रवान शुभकामना पूर्ण करो जी गरीब नवाज कृपा करो खालसा पंथ सेवकों विच एकता सुहाग प्यार की बख्शी करके सतन दास बख्शो चैनल जोड़ो गुरबाणी का प्यार बख्शो हर मैदान दीवान फतेह बख्शने की बात करो जी गरीब नवाज कृपा करो दूर दराज घर बैठे लाइव कथा की सरण कर रही सारी संगत हाजियां प्रवान करो घड़ियां लेके लाओ तो तारा आपने कृपा की संगत ने उदम बख्शे संगत आपके चैनल धन्यवाद कर दिया शुक्रिया अदा कर दिया बेअंत माया ऑनलाइन गुरु घर गुरु घर सेवा संगतार संगत माया भेटा करनी चरण प्रवान करो बख्शा साहब कमाइया सबर करो कार्य वाद बदतार साफ संगत शुभकामना समाधान पूरी करो जी तार मेरा कर आओ सेवा प्रवान करो भुला चुका माही बख्शो पवित्र नाम बख्शे उपरंत अज के शाम की कथा की द्वारा आगा बख्शो रेंदे कार सवार के चरण गुरु आदि बनाओ सही प्यारे मेरे जिन्हें नाम का नाम जतावा नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। दोहरा अग्या भई अकाल के तभी चलायो सब सिखन गु हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की दे जो प्रभु

सुनिहाल सत्रियाकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

साहिब सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी अमृत गुरबाणी विच गुरदेव पिता महाराज सच्चे पातशाह जी ने इस संसार दी बनतर इस संसार दा बनना माया द्वारा लिखिया कि यह संसार माया दे नाल रचिया गया है। माया एक शक्ति है, माया एक ताकत है जो उस परमात्मा परमेश्वर की अपनी किरत है। परमेश्वर की किरत तो अगे संसार की किरत बनी है। जगत संसार का जीवां का सुभा है, असी सारे उस सुभा नाल ही जुड़े हुए हैं। बंदा किरत नाल जो चीज बन चुकी है ना, जो रूप विच है, जो किसी बनतर विच है, ते उदी बंतर भी अखां नूं इंद्रियां नूं सोहनी लगदी होवे, मोहंदी होवे, तां बंदा उदी चका चौंध अंदर गवाच जांदा है, भुल जांदा है बाकी सारा आला दुआला। जो उदे नेत्रां नूं, जो उदे करना नूं, जो उदी रसना नूं, इउं कह लईए माया जिहड़ी है प्रभाव साडे इंद्रियां ते पांदी है, जां इउं कह लईए कि माया जिहड़ी है इंद्रियां दी पकड़ विच, इंद्रे पकड़ना चाहुंदे ने, मन जिहड़ा है इंद्रियां द्वारा इहनूं पकड़ना चाहुंदा है, ते मन आप माया दा रूप है, मन आप माया है, उहदी शक्ति है। इहो मन शक्ति गुरु साहिब जी ने बाणी विच कहा ते शक्ति जिहड़ी है उह माया दा रूप है, माया दा नाम है। सिव अग्गै शक्ति हारिया, असीं पिछे श्लोकां विच इह पढ़िया है, विचारिया है। इक शिव है, इक शक्ति है। शिव नाम है परमेश्वर का, शिव नाम है अकाल पुरख वाहिगुरु का, ते शक्ति नाम है उदी शक्ति दा, उदी कला दा, उदी किरत दा। उदी किरत तो अगे सारा संसार बनया। मान लो माया जिहड़ी है वह जितना भी यह ब्रह्मांड है यह माया रूप है, ते परमात्मा ने अपनी शक्ति द्वारा अपनी कला द्वारा इसनू बनाया है। असी रोज पढ़ते हाँ गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने तो बहुत सुंदर रहमत की है, नेति दसिया सानू कि माया दा रूप किवें दा। एका माई जुगत व्याई, तीन चेले परवान, एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीवान, जिव तिस भावै तिवै चलावै जिव होवै फुरमान। ओ अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर करते ने अपनी माया नूं संसार विच बनाया सिरजिया। उस माया तो फिर अगे ये तीन शक्तियां पैदा हुई, सिरजन दी, विकास दी, ते समेटन दी। संसार नूं सिरजिया जांदा है, संसार नूं संभालिया जांदा, उहदा विकास किया जाता है, ते फिर संसार नूं समेटिया जाता है। ये तीन शक्तियां बना दित्तियां, किसी ने उन्हां दे तीन नां रख दिते, किसी ने तीन देवते कह दिते, किसी ने तीन गुण कह दिते, रजो तमो सतो ब्रह्मा विष्णु महेश, बहुत कुछ कह दिता। पर दतार पिता महाराज सच्चे पातशाह जी ने बाणी विच कृपा की है भी एक परमेश्वर ते दूसरी परमेश्वर की माया। माया परमेश्वर ने तां रची भी संसार रचिया जा सके, ब्रह्मांड रचिया जा सके, ते इस ब्रह्मांड की खेड दे विच्चों ही जेड़ा जीव परमात्मा परमेश्वर का अंश है, सतोगुणी अंश है, माया उहदे विच भी है। तीन चीजा ने जदों असी गहराई दे नाल ग्रंथां नूं जिन्हां ने बहुत गूढ़ ज्ञान दिता है ना, वेदांत दे खासकर ग्रंथ, उन्हां ने तीन रूप मन्ने ने। एक ब्रह्म है, एक ईश्वर है, एक जीव है। तीन चीजा ने, एक ब्रह्म है, एक ईश्वर है, एक जीव है। ब्रह्म है निराकार, जिदे विच कोई निर्गुण, निराकार, अखंडाकार, उसनू ब्रह्म कहा गया। ईश्वर है जेड़ा उस परमात्मा परमेश्वर का रूप है पर माया नाल जुड़िया होया है, पर उस सतो गुण दे अंदर है, माया विच रह के भी उन्हूं ब्रह्मांड दा पता, ब्रह्म दा पता है, अखंडाकार उहदी सुरती है, निराकार उहदी सुरती है, वह निराकार नूं जानदा है, वह ईश्वर है। इस करके जिन्ने भी परमात्मा दे अवतार कह लईए, भगत कह लईए, पैगंबर कह लईए, संसार जगत विच आउंदे ने, गुरु साहिबान कह लईए, उहनां नूं ईश्वर दी उपाधि दित्ती जांदी है। वह ईश्वर ने, जां भगवान आपां कह दिंदे आ, जां परमेश्वर आपां परम ईश्वर कह दिंदे आ, वह सारे जिहड़े ने
क्योंकि कई बारी असी यह विचार करते हैं भी जे अकाल पुरख वाहगुरु अकाल मूरत है अजूनी है, फिर कई शंका करते हैं भी जां गुरु नानक देव जी नूं ब्रह्म दा निराकार दा रूप मन्या गया जां कोई अवतारा नूं अकाल पुरख वाहगुरु दा रूप मन्नदे ने भी अकाल पुरख जिहड़े ने जूनिया विच आए ने, फिर वह अकाल पुरख अजूनी किवें हो गया। वह नहीं जानते कि वह परमात्मा परमेश्वर ते निराकार ते अखंडाकार है, पर उहदे ही अंश विच्चों ईश्वर पैदा हुंदा है जो माया नाल संयुक्त है, माया उहदे नाल जुड़ी हुई है, पर वह माया विच रह करके माया दे प्रभाव तो माया दी कालख तो बचिया है, क्योंकि माया बिना जीव जां संसार बन नहीं सकता, माया बिना जन्म ही नहीं, माया तो बिना जन्म हो ही नहीं सकता, उस परमात्मा दी शक्ति नाल जन्म हुंदा है, पर वह ईश्वर सतो गुणी प्रभाव दे अंदर संसार विच रहिंदा है, अपनी सुरत नूं सदा ब्रह्म विच लीन रखता है, इस करके उन्हां नूं ईश्वर गुरु पीर पैगंबर कहा जाता है। फिर तीसरा आ जाता है जीव, जीव भी ब्रह्म दा ही रूप है, पर जीव ईश्वर तो नीवा है, क्योंकि जीव जदों संसार जगत दे विच जन्म धारण करता है इहदे विच भी माया है, पर इहदे विच माया दा तमो गुणी जां रजो गुणी प्रभाव ज्यादा है, सतो गुणी दी कमी है, तमो ते रजो गुणी प्रभाव दा पड़दा पैण करके जीव ए भुल जांदा है कि मैं ब्रह्म दा रूप हां, मैं ब्रह्म दी अंश हां, उहनूं लगदा है भी मेरी वक्खरी होंद है। ईश्वर कदी अपने आप नूं वक्खरा नहीं कहिंदा, किसे गुरु किसे पीर किसे पैगंबर दी बाणी पढ़ लो, उहनां दे वचन सुन लो, उहनां दे उपदेश सुन लो, कदी नहीं कहणगे कि मेरी अपनी कोई होंद है, मेरा कोई अपना अस्तित्व है, मेरा कोई अपना न्यारापन है। वह जदों भी ईश्वर रूप विच बोलेगा वह सदा ही बार ब्रह्म की गल करेंगे, ब्रह्म की गल करेंगे, उहदी अभेदता की गल करेंगे, वह कहेंगे असी कुछ नहीं। पर जीव के अंदर यह औगुण है कि जीव जदों भी बोलता है अपनी होम विच बोलता है, अपनी मैं विच बोलता है, बोलता परमेश्वर ही है, पर कारण की है कि तमो गुणी रजो गुणी प्रभाव होण करके माया दे ए गुणा दा प्रभाव होण करके इस अज्ञानता विच रहिंदा है कि मैं कोई वखरा हाँ, मेरा कोई वखरा अस्तित्व है, मेरा कोई वखरा रूप है, जिस करके ए पटकना विच ए संसार विच वार वार अपने आवागमन दे विच रहिंदा है, वार वार आउंदा रहिंदा। ते गुरदेव पिता महाराज जी कहिंदे क्योंकि माया बणतरी परमात्मा दी है, परमेश्वर ने बनाया है, ते प्यारी भी लगती है, ए संसार जगत नूं मोह भी रही है, मोह तो बिना ए संसार विच आ ही नहीं सकती, इस करके ने बहुत वड्डे वड्डियां नूं केवल ये नहीं कह सकते भी जिथे परमात्मा दा प्रभाव जां रब दा थान ही उत्थे ही जांदी है। बाबा जी ने ते कहा एड्डी वड्डी है सरपणी ते उपर नहीं बलिया, जिन ब्रह्मा बिशन महादेव छलिया, मार मार सरपणी निर्मल जल पैठी। निर्मल जल पैठी का अर्थ है जिथे निर्मल जीव रहिंदे ने ना, निर्मल मन वाले रहिंदे ने, जेड़े अपने आप नूं सतो गुणी मनदे ने, सतसंगी मनदे ने, रब दे भगत मनदे ने, जिज्ञासु साधक मनदे ने, संत महापुरश अपने आप नूं मनदे ने। बाबा जी कहिंदे मार मार सरपणी निर्मल जल पैठी, ਉਹ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੈਠੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨ ਮਹਾਦੇਵ ਚਲੀਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਇਆ ਹੋਈ ਨਾਗਨੀ ਜਗਤ ਰਹੀ ਲਪਟਾਏ, ਇਸ ਕੀ ਸੇਵਾ ਜੋ ਕਰੇ ਤਿਸ ਹੀ ਕਹੋ ਫਿਰ ਖਾਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਈ ਗਾਰੜੂ ਤਿੰਨ ਮਲ ਦਲ ਲਈ ਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਸਹੀ ਉਭਰੇ ਜਿਨੀ ਸੱਚ ਨਾਮ ਲਿਵਲਾਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੁਗਤ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕੌਣ ਕੌਣ ਇਹ ਨਾਗਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਅਜਗਰ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਜਗਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਏ, ਉਹਨੂੰ ਭੋਜਨ ਖਵਾਉਂਦਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਉਹਦੇ ਜਿੱਡੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕੀ ਸੇਵਾ ਜੋ ਕਰੇ ਤਿਸ ਹੀ ਕਹੋ ਫਿਰ ਖਾਏ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਖਾ ਜਾਂਦੀ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੌਣ ਬਚਦਾ ਹੈ? ਨਾਗਣ ਹੈ, ਨਾਗਣ ਤੋਂ ਤਾਂ ਵੀ ਬਚੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗਾਰੂੜੀ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਈ ਗਾਰੜੂ ਤਿੰਨ ਮਲ ਦਲ ਲਈ ਪਾਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗਾਰੂੜੀ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਨਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ ਨਾ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਗਾਰੂੜੀ ਮੰਤਰ ਹੁੰਦਾ। ਗਰੁੜ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਹੈ ਤੇ ਗਰੁੜ ਜਿਹੜਾ ਪੰਛੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਗ ਨੂੰ ਉਸ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਗਰੁੜ ਦੀ ਵਿਸ਼ਟਾ ਵੀ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਗਰੁੜ ਦਾ ਪੰਖ ਵੀ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਾਗ ਸਰਪ ਇਤਿਆਦਿਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਪੰਛੀ ਦੀ ਐਸੀ ਸਮੈਲ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਐਸੀ ਗੰਧ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਗਾਰੂੜੀ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਤਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ, ਨਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਾਗ ਉਹਨੂੰ ਡੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਨਾਗਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਈ ਗਾਰੂੜੀ, ਉਹ ਗਾਰੂੜੀ ਮੰਤਰ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਉਹ ਮੰਤਰ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਡੰਗ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿਸ ਨਹੀਂ ਚੜ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦਤਾਰ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਲਿਖੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਰੂਪ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਇਆ ਸਿਰਫ ਧਨ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਮਾਇਆ ਸਿਰਫ ਦੌਲਤ ਦਾ ਸ਼ੌਹਰਤ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਮਾਇਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਲ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਤਲ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਲ ਦੀ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਤਲ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੋਰ ਰੂਪ ਹੈ, ਮਾਨਸਿਕ ਤਲ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੋਰ ਰੂਪ ਹੈ, ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਿਮੜੀ ਹੋਈ। ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਚਿਮੜੀ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿਮੜੀ ਹੈ, ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿਮੜੀ ਹੈ, ਅਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿਮੜੀ ਹੈ। ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਸਿਆਣਾ ਵੀ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨੀਵਾਂ ਵੀ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉੱਚਾ ਵੀ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਚਿਮੜੇਗੀ, ਮਾਇਆ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਪੱਲੇ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਚਨ ਕੀਤੇ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਪ੍ਰਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਖੀਰ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਮੁਕਾਈ, ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ, ਕੁੱਤੇ ਦਾ, ਬਿੱਲੇ ਦਾ, ਬਾਂਦਰ ਦਾ, ਖੋਤੇ ਦਾ, ਹਾਥੀ ਦਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਾਇਆ ਚਿਮੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਖੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਦਾ ਕਿਹਦਾ ਨਾਂ ਲਵਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਮਝੋ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜਿਸ ਉਧਰ ਤਿਸ ਮਾਇਆ, ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪੇਟ ਲੱਗਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਲੱਗੀ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਟ ਚੰਦਰਾ, ਪੇਟ ਪਾਪੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ, ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ ਸੰਸਾਰੀ ਪੁਰਖ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜਿਸ ਉਧਰ ਤਿਸ ਮਾਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਧਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਚੇਗਾ ਕੌਣ ਫਿਰ? ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਈ ਗਾਰੂੜੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਜਿਹਦੇ ਪਾਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਇਹ ਰੂਪ ਰੱਖਿਆ। ਦੱਖਣੇ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਦੱਖਣੇ ਵਾਰ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ। ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ ਨਾ। ਇਸ ਸਲੋਕ ਦੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਥ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਅਰਥ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਈ ਸੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਭੀ ਰਵਿਆਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਆਪਣੀ ਗਰਜਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਦੌੜਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਭੀ ਰਵਿਆਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਲ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਆਪਣੀ ਗਰਜ ਕਰਕੇ, ਭਾਵਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਝੁਕਿਆ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਦੀ ਗਰਜ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਦੀ ਮਾਇਆ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਇਆ ਲੱਗੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇਗਾ, ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਉਸਤਤ ਕਰੇਗਾ, ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਲੱਗੀ ਹੋਈਆਂ ਜੀਵਾਤਮਾ, ਸੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਭੀ ਰਵਿਆਸ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਵੀ ਮੇਰੇ ਰਾਹੀਂ, ਭੁੱਖ ਮੇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਮਿਟਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਕੀ ਮੈਂ ਆਸੜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ,
कि मैं कोई आस लैके उन्हां दे पास जावां, मेरी आस पूर्ण करनगे। तिन्ना महजी आस उन्हां नूं मेरी आस है भी ये मेरे कोल कोई आवे, मेरे कोल आके कोई मंगे, मेरे कोल आके कोई आस लैके आवे। ये भी तां आस है ना, ये भी तां एक माया है। मैं पिछले दिन एक साखी सांझी कीती सी कि एक राजा बहुत वड्डा दानी सी, बहुत वड्डा। वो जदों भी गंगा दे घाट दे किनारे खलोंदा सी, क्योंकि तीर्थां दे उत्ते उत्ते लोड़वंद यात्री कह लिए जाचक बहुत आउंदे ने, वह जिते जदों भी वह घाट ते आके खलोंदा सी उच्ची सारी टार मारदा सी कि मैं फलाना राजा हाँ, मेरे कोल आ कुछ है, जो मंगदे हो मेरे पासों कोई भी आके मंगे। हुण जिहड़े अर्थी सन उन्होंने की मंगना, किसी ने टका मंग लिया, दो टके मंग ले, भोजन मंग लिया, वस्त्र मंग लिया, कुछ एहोजे खाण दे पदार्थ मंग ले, तो पूर्ति करी जांदा सी ते उहदा होर हंकार वधी जांदा सी। उह रोज यही कहे बस कोई होर मंगण वाला, कोई होर इस तों ज्यादा लैण वाला। एक फकीर उत्थे बैठा रहिंदा सी जिहड़ा तृप्त सी, उहने देखिया भी इहदे अंदर अहंकार किन्ना भरिया होया। ये दान दे दे के पदार्थ वंड वंड के भी अपने अंदर दी हंगता नूं नहीं मार रहा, सगों होर वड्डी हो रही है दी हंगता। एक दिन वह भी खलो के उहदे जदों ने उच्ची सारी टाहर मारी कि होर नहीं है, कोई जाचक नहीं रह गया, कोई लोड़वंद नहीं रह गया, तो उस भिक्षु ने अपना भिक्षा पात्र उहदे अगे कीता, कहिंदा राजन मैनू भी कुछ दे। कहिण लगा मंगो भिक्षु, की मंगदे हो? भोजन पा दिया, मोहरां पा दिया तेरे कासे दे अंदर बर्तन विच? कहिंदा नहीं, मेरे लिए मिट्टी है, मैनू ये वस्तु की लोड़ नहीं। भोजन कहिंदा मैं अज तक कर लिया, कल की चिंता नहीं। फिर की मंगण आया? कहिंदा मैं कुछ होर मंगना है, तू दे सकदा? कहिंदा हाँ, जो मंगेगा, जो मेरे पास है वह मैं तेनू दे दियांगा, मेरे पास होना चाहिए। कह तेरे पास है, बहुत ज्यादा है, मेरे कासे विच पा दे। वो कहन लगा मंग, उन्हें क्या अपना हंकार मेनू दे दे, मैं तेरे हंकार दा दान लैण आया, मेनू तेरी हौमै चाहीदी है, मेरे बर्तन विच पा दे। क्योंकि फकीर जेड़ा रब दा प्यारा है वह हर एक दा भला ही लोचदा है, वह हर एक दी पद उपर परोपकारी करदा है। उन्हूं रोगी जान के उहदे अंदर दया आई कि इहनूं हंगता तो मैं नियो कर दिया, मुक्त कर दिया। उन्हें जदों कहा यह कि चीज मंगदा, यह कैसा तेरा मंगण वाली दात है, मेरे पास ये नहीं है। कहन लगे नहीं, मैनू कुछ होर नहीं चाहिए, मैनू तेरी हंगता चाहिए, हंकार दे दे। उन्हूं कोई उत्तर नहीं आया, वह चला गया, घर चला गया। घर जाके भी उहदे कन्नां विच ही आवाज गूंजदी है भी हंकार दान दे, हंकार दान दे। धन मोहरां दौलत तू बड़ी दे रहा है, दे रहा है, यह नहीं चाहिए, मैनू अपनी हंगता दान दे दे। कहिंदे उहदे कन्नां विच यह आवाज इन्नी गूंजी, इन्नी गूंजी कि वह शांति नाल ना बैठ सकिया। अखीर उन्हें अपना सारा कुछ दान करके सन्यासी जीवन धारण करके कई साल अपने हंकार नूं ही मिटण ते ला दिता, अपना आपा मिटाण ते ला दिता। ते एक बहुत वड्डा फिर वो बहुत वड्डा मार्गदर्शन बनिया लोकां दा, फिर दोबारा अपने राज विच आया, पर भिक्षु बन के रहा, सन्यासी बन के रहा। ते कईआं नूं उसने उस रब दे राह ते तोरिया, मार्ग ते तोरिया। इहदा भाव है कि जिन्ना चिर माया चिमड़ी हुई है ना, किसी भी रूप की होवे, हंकार की होवे, हीनता की हो, असी कही हंकार ही नहीं हीनता भी यह माया है कि अपने आप नू सब तो कमजोर समझना, अपने आप नू सब तो बुरा समझना, अपने आप नू सब तो नीवा समझना। महापुरुष क्या जानते सी, कह करते सन भी हंकार ते हीनता, रब दे मार्ग ते तुरन वाले जिहड़े रब दे प्यारे ने ना, उन्हां नू पता हुंदा है गुंजलां दा, कहिंदे हा हा हंकार ते हा हा हीनता, ये दोवें ही जीवन दे अंदर माया रूप ने। किसे नू हंकार दी माया चिमड़ी हुई है, किसे नू हीनता दी माया चिमड़ी हुई है, किसे नू झुकण दी माया चिमड़ी हुई है, किसे नू झुकाण दी माया चिमड़ी हुई है, किसे नू उस्तत करन दी माया चिमड़ी है, किसे नू करान दी, किसे नू निंदिया दी माया है, किसे नू किसे रूप दी माया है। कहिंदे सब एक दूजे दी माया दी पूर्ति पे कर दे, जिन्ना की मैं आसड़ी तिन्ना महजी आस, उन्हां नूं मेरी आस है, मैनू उन्हां दी आस है। एक अर्थ यह किते ने, पर कुछ विद्वाना ने दे दूसरे अर्थ भी किते ने भी यह शब्द सलोक उन्हां लई है, मान लो जिहड़े रब दे राह ते तुर के जिन्हां ने अपनी माया मार ली, ममता मन मार लिया। वह कहिंदे ने कि जिन्हां पिछे हौ गई, कि जिन्हां पदार्थां पिछे पहला मेरा मन दौड़दा रहिंदा सी ना, भजदा रहिंदा सी कि आ भी मैनू मिल जाए, आ भी मैनू मिल जाए, से मैं पिछे भी रव्यास। कहिंदे हुण मैं उन्हां तों मुक्त हो गया,
मैं माया तो उपर हो गया रब की कृपा नाल, हुण ओ पदार्थ मेरे पिछे पिछे दौड़दे ने, माया मेरे पिछे पिछे चलती है। कदी मैं माया दे पिछे पिछे चलदा सां, जिन्हों बाबा कबीर जी आखदे ने कि सारा संसार दे पिछे दौड़दा है, पर ए कहो कबीर ए संतन की बैरन तीन लोक की प्यारी। ए संतां दी बैरन है क्योंकि संतां ने कानों काटी नाको काटी काट कूट कह डारी, कहिंदे इहनू दूर कर दिता अपने तो। ये संते दे तो दूरी बना के रखते ने, पर ए उन्हां दी चेरी बनती है, उन्हां दी दासी बनती है, ते जेड़े इहदे दास बनते ने ये उन्हां दी मालक बन जाती है। ये अर्थ भी किते ने भी जो इन्हां तो दौड़ जांदा, जिन्हां ने अपने अंदरों माया मार ली, माया उन्हां दे पिछे हुण दौड़दी है। जिन्हां की मैं आसड़ी, जिन्हां पदार्थां दी कदे मैनू आसा सी, लोड़ सी, तमा सी, अज तिन्ना महिंजी आस, अज मन ऐसा हो गया, जीवन ऐसा हो गया कि वह मेरी लोड़ पे जाचते ने, मैनू पे मंगते ने। दोवें अर्थ विद्वाना दे आपो अपनी थां ते ठीक ने। महला पंजवा, पर प्रकरण माया दे चल रहा है, इस करके ज्यादातर विद्वाना ने अर्थ पहले किते ने भी माया दे विच लोकां दा आपस विच लैण देण है, हर गुण औगुण दा, हर रूप दा, हर पदार्थ दा। गिली गिली रोडड़ी पौंदी भव भव आए, कहिंदे ऐसी है माया जिवें कोई गुड़ दी गिली रोड़ी पई हुंदी है ना, गिली गिली रोड़ी पौंदी भव भव आए, ते उहदे उत्ते मक्खियां पौंदियां आउंदियां ने, मंडरांदियां आउंदियां ने। गुड़ पिलपिला पिया होवे, पुराना पिया होवे, गिला होवे, गर्मी करके, तपश करके, पानी करके उह पिलपिला हो जांदा है, कहिंदे उहदे उत्ते फिर मक्खियां मिठे ते पौंदियां ने, ते कई मक्खियां जिहड़ियां ने उड़दियां रहिंदियां ने, ते फिर उहदे मिठे तो इन्नियां मोहित हो जांदियां ने कि उस गुड़ दे उत्ते बैठ जांदियां ने, ते उह गुड़ जिहड़ा चिपकण वाला हुंदा है, उहनां दे खंभ, उहनां दे पैर मक्खियां दे उहदे विच चिपक जांदे ने, ते उस गिले गुड़ दे विच ही उह मर जांदियां ने। कहिंदे संसार दी माया गिले गुड़ वर्गी है, जीवन मनुख दा मक्खियां वांगू मडराउंदा रहिंदा है इहदे आले दुआले, ते एक दिन जीव इहदे विच फस जांदा है, फिर बड़ा जोर लांदा है, बड़ा यतन करदा है कि मैं इहदे विचों निकलां, फिर इहदे विचों निकलिया नहीं जा सकता। कई रूपां विच गुरु साहिब ने कहा भी इह रोड़ी वर्गी है, गुड़ दी रोड़ी वर्गी, इह अगन वर्गी है, साड़ दिंदी है, इह दरिया वर्गी है, डोब दिंदी है, भाव हर उस रूप नाल जां उस वस्तु नाल तशबीह दित्ती है जिहड़ी मनुख नूं हानि पहुंचा सकती है, जिहड़ी मनुख दा नुकसान कर सकती है। गुरु साहिब कहिंदे गिली गिली रोडड़ी गुड़ दी रोड़ी, गुड़ नूं रोड़ी कहा जांदा है क्योंकि इह जिस वक्त हालांकि पंचम पातशाह दतार पिता महाराज वेले तां गुड़ी ज्यादा कहा जांदा सी, रोड़ी ढेली कहा जांदा सी, ढेली, पर ऐसा समा भी आया कि गुड़ नूं गुड़ कहना भी मना हो गया। पंजाब दी धरती ते खास करके जदों सिखां दे उत्ते घल्लूकारियां दा समा आया ना, आउण वाला घल्लूकारा, ऐसा समा आया भी उस वक्त दे मुगल लोकां ने इह भी फतवे ला दित्ते भी गुरु दा नां लैणा, जे कोई सिख अपने मुख तों गुरु दा नां लएगा ना, गुरु भी आखेगा, उह भी मार दित्ता जाएगा। लखपत राय, जसपत राय जिहदा सिखां ने सिर वढ़िया सी, उह लखपत राय इन्ना हंकारी सी, उन्हें इथों तक बोल कहे सन क्योंकि वह खतरी सी पर मुगलां दा पैरोकार सी। उन्हें क्या जो दे भरा नूं सिखां ने मारिया ना, उन्हें बोल कहे, कहिंदे एक खतरी ने सिख धर्म शुरू किया सी, गुरु नानक देव जी की गल करदा, कहिंदे एक खतरी तो यह धर्म शुरू होया सी, हुण एक खतरी इहदा नाश कर देगा, मैं इहनूं नाश कर देंगा, मेरे तो इहदा खात्मा होएगा। उन्हें गुड़ शब्द कहने ते भी पाबंदी ला दी सी भी गुड़ भी कहांगे ते इहदे च भी गुरु दिसदा है, गुरु का भुलेखा पैंदा है, इस करके गुड़ भी नहीं कह सकते। इस करके अज भी पंजाब की धरती ते खास करके गुरदासपुर वाले एरिए ते विच गुड़ नूं ढेली कहिंदे ने, ढेली कहा जांदा है, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਇੰਨਾ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਗੁੜ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਵੀ ਗੁੜ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਹੰਡਾਇਆ। ਉਹ ਗੁੜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਰਤਾ ਆ ਗਈ, ਗਿੱਲੀ ਗਿੱਲੀ ਰੋਡੜੀ ਭੌਂਦੀ ਭਵ ਭਵ ਆਏ, ਜੋ ਬੈਠੇ ਸੇ ਫਾਥਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਬਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਪਦਾਰਥ ਹਨ, ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੋ ਬੈਠੇ ਜੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਸੇ ਫਾਥਿਆ, ਉਹ ਫਸ ਗਏ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਗਰਕ ਗਏ,
ਉਭਰੇ ਭਾਗ ਮਥਾਹੇ। ਪਰ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਉੱਚੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉਭਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਭਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਮੈਂ ਅਰਜ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪਸਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਪੈਠੀ, ਕੋਈ ਥਾਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਬੰਦਾ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਭੱਜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇ, ਟਕਾ ਮਿਲੇ, ਪਿਆਰ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਜਾਏ ਕਿੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨਾ ਬਾਹਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿੰਨਾ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ, ਠਾਕੁਰ ਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਵਿਤ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕੀ ਅਗਨ ਜਲ ਬੁਝਤ ਸਰਿਤਾ ਸਹਿਬ, ਅਗਨ ਮੈਂ ਜੋ ਨਾਉ ਮੈਂ ਜੋ ਅਗਨ ਲੱਗ ਹੈ ਕੈਸੇ ਕਹਿ ਬੁਝਾਈ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਕੀ ਅਗਨ ਬੁਝਤ ਜਲ ਸਰਿਤਾ ਕਹਿ, ਅਗਨ ਨਾਉ ਮੈਂ ਜੋ ਅਗਨ ਲੱਗ ਹੈ ਕੈਸੇ ਕਹਿ ਬੁਝਾਈ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਸਹਿ ਭਾਜ ਕੋਟ ਲੀਜੀਏ ਤੋ ਕੋਟ।

तुमरी शरण तुम्हारी आसा, तुम ही सजन सोहेले, राखो राखनहार दयाला, नानक करके गोले। हो आया दूरों चल के, मैं तकी तो शरणाए जियो, मैं आशा रखी चित में, मेरा सबो दुख गवाए जियो। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। सलोक महला तीजा। ए मन हर जी त्याए तू, एक मन एक चित पाए,

कई कोट पंखी सर्प उपाय, कई कोट पाथर बिरख निप जाय, कई कोट पवन पाणी बैसंत्र, कई कोट देश भू मंडल, कई कोट ससियर सुर नखियत्र, कई कोट देवदानव इंद्र सिर शत्र, सगल समग्री अपने सूत तारै, नानक जिस जिस भावै तिस तिस निस तारै, कई कोट राजस तामस स्वातक, कई कोट वेद पुराण सिमरत अरसास्त, कई कोट किए रतन समुंद, कई कोट नाना प्रकार जंत, कई कोट किए चैर जीवे, कई कोट गिरिमेर सुवर्ण थीवे, कई कोट जख्य किन्नर पिसाच, कई कोट भूत प्रेत शुक्र मृगाच, सब ते नेरै सबहू ते दूर, नानक आप अलिपत रहया भरपूर, कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नरक सुरग निवासी, कई कोट जन्म है जीवा है मर है, कई कोट बहु जोने फिर है, कई कोट बैठत ही खाहे, कई कोट घल है थक पाहे, कई कोट किए तनवंत, कई कोट माया मह चिंत, जह जह भाणा तह तह राखे, नानक सब किश प्रभ कै हाथे, कई कोट पहे बैरागी राम नाम संग तिन लेव लागी, कई कोट प्रभ कौ खो जानते आत्म मह पार ब्रह्म लहंते, कई कोट दर्शन प्रभ प्यास तिन को मिल्यो प्रभ अविनाश, कई कोट मांग है सत संग पार ब्रह्म तिन लागा रंग, जिन कौ होए आप सो प्रसन्न नानक ते जान सदा धन धन, कई कोट खाणी अरखंड कई कोट आकाश ब्रह्मांड, कई कोट होय अवतार कई जुगत कीनो बिसुथार, कई बार पसरयो पासार सदा सदा एको एकंकार, कई कोट कीने बहु भांत प्रभ ते होए प्रभ माहे समात, ताका अंत न जाने कोई आपे आप नानक प्रभ सोए, कई कोट पार ब्रह्म के दास तिन होवत आत्म प्रगास, कई कोट तत् के बेते सदा निहार है एको नेत्रे, कई कोट नाम रस पीवा है अमर पय सद सद ही जीवा है, कई कोट नाम गुण गाव है आत्म रस सुख सहज समाव है, अपने जन को सास सास मारे नानक ओए परमे परमेश्वर के प्यारे, सलोक करण कारण प्रभ एक है दूसर नाही कोए, नानक तिस बल हारण जल थल मही अल सोए, अष्टपदी करण करावन करने जोग जो तिस भावै सोई होग, खिन मह थापो थाप नहारा अंत नहीं किश पारा वारा, हुक्मे तार अतार रहावै हुक्मे उप जाय हुक्म समावै, हुक्मे ऊच नीच व्यवहार हुक्मे अनकरंग प्रकार, कर कर देखै अपनी वडियाई नानक सब मैं रहया समाई, प्रभ भावै मनुख गत पावै प्रभ भावै ता पाथर तरावै, प्रभ भावै बिन सास्ति राखै प्रभ भावै ता हर गुण पाखै, प्रभ भावै ता पतत उधारै आप करै आपन विचारै, तुहां सिरियां का आप स्वामी खेलै बिगसै अंतर जामी, जो पावै सो कार करावै नानक दृष्टि अवर न आवै, कहो मनुख ते क्या होयावै जो तिस भावै सोई करावै, इसके हाथ होए ता सब किछ ले जो तिस भावै सोई करै, अन जानत बिख्या मैं रचै जे जानत आपन आप बचै, भरमे भूला दह दिस तावै निमुख माहे चार कुंट फिर आवै, कर कृपा जिसे अपनी भगत दे नानक ते जान नाम मिले, खिन मह नीच कीट कौराज पार ब्रह्म गरीब निवाज, जाका दृष्ट कशु न आवै तिस तत्काल दह दिस प्रगटावै, जा कौ अपनी करै बख्शीस ताका लेखा न गनै जगदीस, जियो पिंड सब तिस की रास घट घट पूरन ब्रह्म प्रगास, अपनी बणत आप बनाई नानक जीवै देख बडाई, इस का बल नाही इस हाथ करण करावन सर्ब को नाथ, आज्ञा करी बपुरा जियो जो तिस भावै सोई फोन थियो, कबहू ऊच नीच मह बसै कबहू सोग हरख रंग हसै, कबहू निंद चिंद ब्यवहार कबहू ऊब आकाश पयाल, कबहू बेता ब्रह्म विचार नानक आप मिलावन हार, कबहू निरत करे बहु भांत कबहू सोए रहे दिन रात, कबहू महाक्रोध बिकराल कबहू सर्ब की हो तरवाल, कबहू होए बह बड़ राजा कबहू भिखारी नीच का साजा, कबहू आप कीरत मह आवै कबहू भला भला कहावै, ज्यों प्रभ राखै तिव ही रहै गुर प्रसाद नानक सच कहै, कबहू होए पंडित करे बख्यान कबहू मोन धारी लावै ध्यान, कबहू तट तीरथ इशनान कबहू सिद्ध साधिक मुख ज्ञान, कबहू कीट हस्त पतंग होए जिया अनेक जोन भर मैं परमिया,
ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਜਿਉਂ ਸੌਂਦੀ ਦਿਖਾਵੈ ਜਿਉਂ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਨਚੈ।

ਸਲੋਕ ਸਰਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੁਨ ਸਮਾਧੀ ਆਪੋ ਆਪਨ ਕੀਆ ਨਾਨਕਾ ਆਪੇ ਹੀ ਵਿਰ ਜਾਪੋ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਜਬ ਆਕਾਰ ਇਹੋ ਕਛ ਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਿਤਾ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਤਬ ਕਹਿਤੇ ਹੋਤਾ ਜਬ ਧਾਰੀ ਆਪਨ ਸੁਨ ਸਮਾਦੋ ਤਬ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸ ਸੰਗ ਕਮਾਤ ਜਬ ਇਸ ਕਾ ਬਾਰਨ ਚਿਹਨ ਨਾ ਜਾਪਤ ਤਬ ਹਰਕ ਸੋਗ ਕਹੋ ਕਿਸ ਹੈ ਵਿਆਪਤ ਜਬ ਆਪਨ ਆਪ ਆਪ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤਬ ਮੋਹ ਕਹਾ ਕਿਸ ਹੋਵਤ ਭਰਮ ਆਪਨ ਖੇਲ ਆਪ ਵਰਤੀ ਜਾ ਨਾਨਕ ਕਰਨੇ ਹਾਰ ਨ ਦੂਜਾ ਜਬ ਹੋਵਤ ਪ੍ਰਭ ਕੇਵਲ ਧਨੀ ਤਬ ਬੰਦ ਮੁਕਤ ਕਹੋ ਕਿਸ ਕਹੋ ਗਨੀ ਜਬ ਏਕ ਹੈ ਹਰ ਅਗਮ ਅਪਾਰ ਤਬ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਕਹੋ ਕੌਣ ਅਵਤਾਰ ਜਬ ਨਿਰਗੁਣ ਪ੍ਰਭ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਤਬ ਸੇਵ ਸਾਕਤ ਕਹੋ ਕੇ ਤੁਠਾਏ ਜਬ ਆਪ ਹੈ ਆਪ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਧਰੈ ਤਬ ਕਵਨ ਨਿਡਰ ਕਵਨ ਕਾ ਤੋ ਡਰੈ ਆਪਨ ਚਾਲੇ ਤੋ ਆਪ ਕਰਨੇ ਹਾਰ ਨਾਨਕ ਠਾਕੁਰ ਅਗਮ ਅਪਾਰ ਅਬਿਨਾਸੀ ਸੁਖ ਆਪਨ ਆਸਨ ਤਹਿ ਜਾਨਮ ਮਰਨ ਕਹੋ ਕਹਾ ਬਿਨਾਸਨ ਜਬ ਪੂਰਨ ਕਰਤਾ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ ਤਬ ਜਮ ਕੀ ਤ੍ਰਾਸ ਕਹੋ ਕਿਸ ਹੋਏ ਜਬ ਅਵਗਤ ਅਗੋਚਰ ਪ੍ਰਭ ਏਕਾ ਤਬ ਚਿਤ੍ਰ ਗੁਪਤ ਕਿਸ ਪੂਛਤ ਲੇਖਾ ਜਬ ਨਾਥ ਨਿਰੰਜਨ ਅਗੋਚਰ ਅਗਾਧੇ ਤਬ ਕੌਣ ਛੁਟੇ ਕੌਣ ਬੰਧਨ ਬਾਧੇ ਆਪਨ ਆਪ ਆਪ ਹੀ ਅਚਰਜਾ ਨਾਨਕ ਆਪਨ ਰੂਪ ਆਪ ਹੀ ਉਪਰਜਾ ਜਹ ਨਿਰਮਲ ਪੁਰਖ ਪੁਰਖ ਪਤ ਹੋਤਾ ਤਹਿ ਬਿਨ ਮਹਿਲ ਕਹੋ ਕਿਆ ਧੋਤਾ ਜਹ ਨਿਰੰਜਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਰਬਾਨ ਤਹਿ ਕੌਣ ਕਉ ਮਾਨ ਕੌਣ ਅਭਿਮਾਨ ਜਹ ਸਰੂਪ ਕੇਵਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਤਹਿ ਸ਼ਲ ਸ਼ਿਦਰ ਲਗਤ ਕਹੋ ਕੀਸ ਜਹ ਜੋਤ ਸਰੂਪੀ ਜੋਤ ਸੰਗ ਸੁਮਾਵੈ ਤਹਿ ਕਿਸ ਹੈ ਭੂਖ ਕਵਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੈ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨੇ ਹਾਰ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕਾ ਨਾਹੀ ਸੁਮਾਰ ਜਬ ਆਪਣੀ ਸੋਭਾ ਆਪਨ ਸੰਗ ਬਨਾਈ ਤਬ ਕਵਨ ਮਾਏ ਬਾਪ ਮਿੱਤਰ ਸੋਤ ਭਾਈ ਜਹ ਸਰਬ ਕਲਾ ਪਿਹ ਪ੍ਰਬੀਨ ਤਹਿ ਬੇਦ ਕਤੇਵ ਕਹਾ ਕੋ ਚੀਨ ਜਬ ਆਪਨ ਆਪ ਆਪ ਉਰ ਧਾਰੈ ਤਉ ਸਗਨ ਆਪ ਸਗਨ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰੈ ਜਹ ਆਪਨ ਊਚ ਆਪਨ ਆਪ ਨੇਰਾ ਤਹ ਕੌਣ ਠਾਕੁਰ ਕੌਣ ਕਹੀਐ ਚੇਰਾ ਬਿਸਮਨ ਬਿਸਮ ਰਹੇ ਬਿਸਮਾਦ ਨਾਨਕ ਆਪਣੀ ਗਤ ਜਾਣਹੁ ਆਪ ਜਹ ਅਸ਼ਲ ਅਸ਼ੇਦ ਅਭੇਦ ਸਮਾਇਆ ਊਹਾ ਕਿਸ ਹੈ ਵਿਆਪਤ ਮਾਇਆ ਆਪਸ ਕੋ ਆਪੇ ਆਦੇਸ਼ ਤਿਹ ਗੁਣ ਕਾ ਨਾਹੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਜਹ ਏਕ ਹੈ ਏਕ ਏਕ ਭਗਵੰਤਾ ਤਹ ਕੌਣ ਅਚਿੰਤ ਕਿਸ ਲਾਗੈ ਚਿੰਤਾ ਜਹ ਆਪਨ ਆਪ ਆਪ ਪਤੀਯਾਰਾ ਤਹ ਕੌਣ ਕਥੈ ਕੌਣ ਸੁਣੈ ਹਾਰਾ ਬਹੁ ਬੇਅੰਤ ਊਚ ਤੇ ਊਚਾ ਨਾਨਕ ਆਪਸ ਕਉ ਆਪੇ ਪਹੁਚਾ ਜਹ ਆਪ ਰਚਿਓ ਪ੍ਰਪੰਚ ਆਕਾਰ ਤੇਹ ਗੁਣ ਮੈਂ ਕੀਨੋ ਬਿਸਥਾਰ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਤੈ ਭਈ ਕਹਾਵਤ ਕੋ ਨਰਕ ਕੋ ਸੁਰਗ ਬੰਸ਼ਾਵਤ ਆਲ ਜਾਲ ਮਾਇਆ ਜੰਜਾਲ ਹਮੈ ਮੋਹ ਪਰਮ ਪਹਿ ਪਾਰ ਦੁਖ ਸੁਖ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨ ਅਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਓ ਬਖਿਆਨ ਆਪਨ ਖੇਲ ਆਪ ਕਰ ਦੇਖੈ ਖੇਲ ਸੰਕੋਚੈ ਤਉ ਨਾਨਕ ਏਕੈ ਜਹ ਅਵਗਤ ਭਗਤ ਤਹ ਆਪ ਜਹ ਪਸਰੇ ਪਸਾਰ ਸੰਤ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੋਹੂ ਪਾਖ ਕਾ ਆਪੇ ਧਨੀ ਉਨਕੀ ਸੋਭਾ ਉਨਹੂ ਬਨੀ ਆਪੇ ਕੌਤਕ ਕਰੈ ਆਨੰਦ ਚੋਜ ਆਪੇ ਰਾਸ ਭੋਗਨ ਨਿਰਜੋਗ ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਆਪਨ ਨਾਇ ਲਾਵੈ ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਖੇਲ ਖਿਲਾਵੈ ਬੇਸੁਮਾਰ ਅਥਾਹ ਅਗਨਤ ਅਤੁਲੈ ਜਿਉ ਬੁਲਾਵਹੁ ਤਿਉ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬੋਲੈ ਸਲੋਕ ਜੀ ਜੰਤ ਕੇ ਠਾਕੁਰਾ ਆਪੇ ਵਰਤਨ ਹਾਰ ਨਾਨਕ ਏਕੋ ਪਸਰਿਆ ਦੂਜਾ ਕਹਿ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਰ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਆਪ ਕਥੈ ਆਪ ਸੁਣਨੇ ਹਾਰ ਆਪੇ ਏਕ ਆਪ ਬਿਸਥਾਰ ਜਤ ਸੁਭਾਵੈ ਤਾਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਉਪਾਏ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਲਏ ਸਮਾਏ ਤੁਮ ਤੇ ਭਿੰਨ ਨਹੀਂ ਕਿਛੁ ਹੋਏ ਆਪਨ ਸੂਤ ਸਭ ਜਗਤ ਪਰੋਏ ਜਾ ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ ਆਪ ਬੁਝਾਏ ਸਚ ਨਾਮ ਸੋਈ ਜਨ ਪਾਏ ਸੋ ਸਮਦਰਸੀ ਤਤ ਕਾ ਬੇਤਾ ਨਾਨਕ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਜੇਤਾ ਜੀ ਜੰਤਰ ਸਭ ਤਾਕੇ ਹਾਥ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਅਨਾਥ ਕੋ ਨਾਥ ਜਿਸ ਰਾਖੈ ਤਿਸ ਕੋਏ ਨਾ ਮਾਰੈ ਸੋ ਮੂਆ ਜਿਸ ਮਨਹੋਂ ਬਿਸਾਰੈ ਤਿਸ ਤਾਜ ਅਵਰ ਕਹਾਂ ਕੋ ਜਾਏ ਉਬਰੈ ਰਾਖਨ ਹਾਰ ਤਿਆਏ
तिस ताज अवर कहां को जाए, सब सिर एक निरंजन राय। जी की जुगत जाके सब हाथ, अंतर बाहर जानहु साथ। गुण निधान बेअंत अपार, नानक दास सदा बलिहार। पूरन पूर रहे दयाल, सब ऊपर होवत कृपाल। अपने करतब जाने आप, अंतर जामे रहो ब्याप। प्रत पालै जीअन बहु भांत, जो जो रचियो सो तिस है त्यात। जिस भावै तिस लय मिलाए, भगत करह हर के गुण गाए। मन अंतर विश्वास कर मान्या, करन हार नानक एक जानिया। जान लागा हर एक नाए, तिसकी आसन बरती जाए। सेवक को सेवा बन आई, हुक्म बूझ परम पद पाई। इस ते उपर नहीं विचार, जाकै मन बसया निरंकार। बंधन तोर पए निरवैर, आन दिन पूजा है गुर के पैर। ए लोक सुखिए पर लोक सुहेले, नानक हर प्रभु आपे ही मेले। साध संग मिल करहो आनंद, गुण गावहो प्रभु परमानंद। राम नाम तत करहो विचार, दुर्लभ देखा करहो उदार। अमृत बचन हर के गुण गाओ, प्राण तरन का है सुहाओ। आठ पहर प्रभ पे खोहो नेरा, मिटे अज्ञान बिन सय अंधेरा। सुन उपदेश हृदय बसावहो, मन इच्छे नानक फल पावहो। हलत पलत दोए लेहो सवार, राम नाम अंतर उरतार। पूरे गुर की पूरी दिखिया, जिस मन बसाए तिस साच परिख्या। मान तन नाम जपहो लिव लाए, दुख दर्द मन ते पाओ जाए। सच वा पार करहो वा पारी, दरगाह निभाए खेप तुम्हारी। एका टेक रखहो मन माहे, नानक बहुर न आवह जाहे। तिस ते दूर कहा को जाए, उबरै रखन हार त्याए। निरपाओ जपाए सगल पाओ मिटाए, प्रभ कृपा ते प्राणी छुटाए। जिस प्रभ राखै तिस नाही दुख, नाम जपत मन होवत सुख। चिंता जाए मिटे अहंकार, तिस जन कहो कोई न पौचन हार। सर ऊपर ठाडा गुरसूरा, नानक ताके कारज पूरा। मत पूरी अमृत जाकी दृष्ट, दर्शन पेखत उधरत श्रेष्ठ। चरण कमल जाके अनूप, सफल दर्शन सुंदर हर रूप। तन सेवा सेवक परवान, अंतर जामी पुरख प्रधान। जिस मन बस सो हो तिनिहाल, ताकै निकट न आवत काल। अमर पए अमरा पद पाया, साध संग नानक हर तिहाया। श्लोक ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर बिनास। हर कृपा ते संत पिटिया, नानक मन प्रगास। अष्टपदी संत संग अंतर प्रभ डीठा, नाम प्रभु का लागा मीठा। सगल समग्री एक स्कट माहे, अनक रंग नाना दृष्टा है। नवनिध अमृत प्रभ का नाम, देही मैं इसका विश्राम। सुन समाद अनहत तहनाद, कहन न जाई अचरज विसमाद। तिन देखिया जिसे आप दिखाए, नानक तिस जन सो जी पाए। सो अंतर सो बाहर अनंत, घट घट व्याप रहया भगवंत। तरन माहे आकाश पयाल, सर्ब लोक पूर्ण प्रतपाल। बान तिन पर्वत है पार ब्रह्म, जैसी आज्ञा तैसा कर्म। पौन पानी बै संतर माहे, चार कुंट दह दिसे समाहे। तिस दे भिन्न नहीं कोठाऊ, गुर प्रसाद नानक सुख पाऊ। वेद पुराण सिमरत मैं देखो, ससियर सुर नखियत्र मैं एक। बाणी प्रभ की सब को बोले, आप अडोल न कब हुंडोले। सर्ब कला कर खेलै खेल, मोल ना पाई गुण है अमोल। सर्ब ज्योत मैं जाकी ज्योत, तार रहे ओ स्वामी ओत पोत। गुर प्रसाद परम का नासो, नानक तिन मैं एहो बिसास। संत जना का पेखन सब ब्रह्म, संत जना कै हृदय सब धर्म। संत जना सुनहे शुभ बचन, सर्व व्यापी राम संग रचन। जिन जाता तिस किए रहत, सत बचन साधु सब कहत। जो जो होए सोई सुख माने, कारण करावन हार प्रभ जाने। अंतर बसे बाहर पियो ही, नानक दर्शन देख सब मोही। इसते आप सत किया सब सत, तिस प्रभ ते सगली उत्पत। तिस पावे ता करे बिस्थार, तिस पावे ता एक ओंकार। अनक कला लखी नह जाए, जिस पावे तिस लय मिलाए।
कवन निकट कवन कहिए दूर, आपे आप आप भरपूर अंतर्गत जिस आप जनाए, नानक तिस जन आप बुझाए, सर्वभूत आप वरतारा, सर्वनैन आप पेखनहारा, सगल समग्री जाका तना, आपन जासो आप ही सुना, आवन जान एक खेल बनाया, आज्ञाकारी की नी माया, सब कै मध अलिप तोरा है, जो किश कहना सो आपे कहै, आज्ञा आवै आज्ञा जाए, नानक जा पावै तां लए समाए, इस ते होए सो नाही बुरा, ओ रै कहो किने कछु करा, आप भला करतूत आतनी की, आपे जाने अपने जी की, आप साच तारी सब साच, ओत पोत आपन संग राच, ताकि गत मित कही न जाए, दूसर होए ता सोजी पाए, तिसका किया सब प्रवान, गुर प्रसाद नानक एहो जान, जो जाने तिस सदा सुख होए, आप मिलाए लए प्रभ सोए, ओहो धनवंत कुलवंत पतवंत जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत, धन धन धन जन आया जिस प्रसाद सब जगत तराया, जन आवन का इह सुआओ, जन कै संग चित आवै नाओ, आप मुक्त मुक्त करै संसार, नानक तिस जन को सदा नमस्कार। सलोक

अष्टपदी पूरे गुर का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेख सा सा सिमरहो गोविंद मन अंतर की उतरै चिंद आस अनित त्याग हो त्रंग संत जना की तूर मन मंग आप छोड़ बेनती करहो साध संग अग्न सागर तरहो हर तन के पर लिहो भंडार नानक गुर पूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद साध संग भाज परमानंद नरक निवार उदार हो जियो गुण गोबिंद अमृत रस पियो चित चित वहो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दमोदर दीन दयाल दुख भंजन पूरन कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का यह आधार उत्तम श्लोक साध के बचन अमलीक लाल हे रतन सुनत कमावत होत उधार आप तर लोकह निसतार सफल जीवन सफलता का संग जाके मन लागा हर रंग जय जय शब्द अनाहद वाजय सुन सुन आनंद करे प्रभ गाजय प्रगटे गोपाल महात कै माथे नानक उधरे तिन के साथे सरन जोग सुन सरन आए कर कृपा प्रभ आप मिलाए मिट गए बैर पए सब रेन अमृत नाम साध संग लैन सो प्रसन्न पए गुरुदेव पूरन होई सेव की सेव आल जंजाल बिकार ते रहते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद दया प्रभ तारी नानक निब ही खेप हमारी प्रभ की उस्तत करहो संत मीत सावधान एकाग्र चीत सुख मने सहज गोविंद गुण नाम जिस मन बसै सो होत निधान सर्व इच्छा ताकि पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए सब ते ऊच पाए अस्थान बहुर न होवै आवन जान हर तन खाट चले जन सोए नानक जिस है प्राप्त होए खेम शांत रिद नव निद बुद्ध ज्ञान सर्वत है सिद्ध विद्या तप जोग प्रभ ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान चार पदार्थ कमल प्रगास सब कै मध सगल ते उदास सुंदर चतुर तत का बेता समदर्शी एक दृष्टिता एह फल तिस जन कै मुख पने गुरु नानक नाम बचन मन सुने एहो निदान जपै मन कोए सब जुग मह ताकि गत होए गुण गोबिंद नाम तुन बाणी सिमरत शास्त्र वेद बखाणी सगल मतांत केवल हर नाम गोबिंद भगत कै मन बिसराम कोट अपराध साध संग मिटै संत कृपा ते जमते छुटै जाके मस्तक कर्म प्रभ पाए साध शरण नानक ते आए।

आभ अपंग गतमित अपार गुणगन उदार मुनगन परिणाम निर्भय निकाम अतदुत प्रचंड मितगत अखंड आलस्य कर्म आदृश्य धर्म सर्व प्रणड्य अंडंड बाड्य

भुजंग प्रयाचंद चत्र चक्र करता चत्र चक्र हरता चत्र चक्र दानी चत्र चक्र जानी चत्र चक्र वर्ती चत्र चक्र परती चत्र चक्र पाले चत्र चक्र काले चत्र चक्र पासे चत्र चक्र वासे चत्र चक्र मान्य चत्र चक्र दान्य चाचरी छंद न सत्रय न मित्रय न परमंग न पित्रय न कर्मंग न काय अजन्मंग अजाय न चित्रय न मित्रय परे है पवित्र प्रतिशय अधिशय अदृश्य कृशय भगवती छंद त्व प्रसाद कथते किया चिज देश किया भिज पिसै किया गंज करमै किया भंज भरमै किया भिज लोकै किया दित सुकै के अवतूत बरनै के बिभूत करनै के राजंग प्रभा है के धर्मंग तुझा है के आसोक बरनै के सर्वा अपरनै के जगतंग कृति है के छत्रंग छत्री है के बर्मंग स्वरूपै के अनुभव अनुपै आद अदेव है के आप अपेव है के चित्रंग वहीन के कै अधीन के रोजी रजा कह रही मैं रेहा कह के पाक वे बह के गै बुल गै वह के अफुल गुना है के साहन सा है के कारण कुनिंद है के रोजी देहंद है के राजक रहीम है के कर्मंग करीम है के सर्वंग कली है के सर्वंग दली है के सर्वत्र मान्य है के सर्वत्र दान्य है के सर्वत्र गौण है के सर्वत्र पौण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र साज है के सर्वत्र दीन है के सर्वत्र लीन है के सर्वत्र जाहु के सर्वत्र पाहु के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र भूख है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र मान्य है सदैव प्रधान्य है के सर्वत्र जाप्य है के सर्वत्र थाप्य है के सर्वत्र पान है के सर्वत्र मान है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है के सर्व

हैं, आदिसुल अलीक हैं, हमीसुल अपीक हैं, जमीनुल जमा हैं, अमीकुल इमा हैं, करीमुल कमाल हैं के जुर्रत जमाल हैं, के अचलंग प्रकाश हैं के मितु सुबास हैं, के अजब स्वरूप हैं के अमितु विभूत हैं, के अमितु पसा हैं के आत्म प्रभा हैं, के अचलंग अनंग हैं के अमितु अपांग हैं, मद पार चंत्व प्रसाद मुन मन प्रणाम गुन गन मुदाम अरबर अगंज हर नर परपंज अनगन प्रणाम मुन मन सलाम हर नर अखंड बरनर अमंड अनुभव अनास मुन मन प्रकाश गुन गन प्रणाम जल थल मुदाम अंचिज अंग आसन अपांग उपमा अपार गतमित उदार जल थल अमंड दिस विस अपंड जल थल अमंड दिस विस अपंड दिस अनुभव अनास जल थल अमंड दिस विस अपंड जल थल महंत दिस विस बेअंत अनपवनास त्रितरतुरास आजान बाहु कैसदाहु ओंकाराद कथनी अनाद खल खंड खयाल गुरबर अकाल कर कर प्रणाम चित चरण नाम अनशिज गात अजिज न बात अनचंज गात अनरंज बात अनटुट भंडार अनडठ अपार आडीट धर्म अत टीट कर्म अनवरण अनंत दाता महंत हर बोल मना चंत प्रसाद करुणालय है अरकालय है खलखंडन है महमंडन है जगतीश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्ववारण है त्रित के तरण है जग के करण है मनमान्य है जग जान्य है सर्वंग पर है सर्वंकर है सर्वपाश्य है सर्वनाश्य है करुणा कर है विश्वंभर है सर्वेश्वर है जगतीश्वर है ब्रह्मंड से खलखंड से परते पर है करुणा कर है अजपा जप है थपा थप है अकृता कृत है अमृता मृत है अमृता मृत है करुणा कृत है अकृता कृत है धरणी त्रित है मृतेश्वर है परमेश्वर है अकृता कृत है अमृता मृत है अजपा कृत है अमृता मृत है निर्णायक है खलकायक है विश्वम्पर है कुरुणालय है निपनायक है स्वरपायक है पपंजन है अरगंजन है रिपतापन है जप जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है करता कर है हरता हर है परमात्म है सर्वात्म है आत्म बस है जस की जस है भुजंग प्रया चंद नमो सूर्य सूर्ये नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो रासंग तामसंग शांत रूपे नमो परम तत्तंग तत्तंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो पूज पूजे नमो पान पाने नमो कलह कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे नादंग विभूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो वासासे नमो बांक बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे कचरी चंद अजय अलय अपय अभय अपू अजू अनाश अकाश अगंज अपंज अलख अपख काल दयाल अलेख अपेख अनाम काम गाह अठा नाथे परमाथे अजूनी अमोनी नरागे नरंगे नरूपे नरेखे कर्मंग परमंग गंजे अलेखे भुजंग प्रया चंद नमस्तुल प्रणामे समस्तुल प्रणासे अगंजुल नामे समस्तुल निवासे निरकामंग विभूते समस्तल स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी सुधर्मंग विभूते सदा सचदानंद सत्रंग प्रणासी करिमुल कुनिंदा समस्तुल निवासी अजाय विभूते गजाय गनिमे हरियं करियं करिमुल रहीमे चतर चक्रवर्ती चतर चक्र पुगते सोयं पव सुभंग सर्वदा सर्वजुगते दुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं विभूते।

श्री भगवान की भाई कृपा ऊते एक रति बिन एक रत्ती के माते मतंग जरे जर संग नूपू तंग सुरंग सुवारे कोट तुरंग कुरंग से कूदत पौन के गौन को जात निवारे भारी बुझान के भूप भली बिद न्यावत शीस न जात विचारे इत्ते भय तो कहा भय भूपत अंत को नांग ही पाए पधारे जीत फिरे सब देश दिशान को बाजत ढोल मृदंग नगारे गुंजित गुड़ गजान के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे भूत पवेक पवान के भूपत कौन गने नहीं जात बिचारे श्री पद श्री भगवान भजे बिन अंत को अंत के धाम सिदारे तीर्थ नान दया दम दान सुसंजम नेम अनेक बसिख भेद पुराण कतेब कुरान जमीन जमान सबान के पिख पौन आहार जति जत तार सब सुचार हजार के दिख श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक न लिख शुद्ध सिपाहा दुरंत दुबाहा सुसाज सना दुर्जान दलेंगे भारी गुमान परे मन में कर पर्वत पंख हले न हलेंगे तोर रीन मरोरम वासन मातिम तंगन मान मलेंगे श्रीपद श्री भगवान।

के मान मलैया, गाड़े गडान के तोड़ न हार, सो बात नहीं चकचार लवैया। साहिब श्री सब को सिर नायक, जाचक अनेक सुवेक दिवैया। दानव देव फनिंद निसाचर, भूत भविख भवान जपेंगे। जीव जिते जल में थल में, पल ही पल में सब ताप थपेंगे। पुन पर तापन बाढ़ जैत, तुन पापन के भो पुंज खपेंगे। साध समूह पर सन फिरे, जग सत्र सब अवलोक चपेंगे। मानव इंद्र जिंद्र निराधप, जौंतर लोक को राज करेंगे। कोट स्नान गजा दिक दान, अनेक सुवंबर साज भरेंगे। ब्रह्म महेश्वर विष्ण सचिपत, अंत फसे जम्फास परेंगे। जे नर श्रीपत के प्रस है, पगते नर फेर न देह तरेंगे। कहा भयो जो दो लोचन मूंद कै, बैठ रहे हो बक ध्यान लगायो। नात फिरियो लिए सात समुन्द्रन, लोक गयो पर लोक गवायो। बास कियो बखियान सु बैठ कै, ऐसे ही ऐसे सुबैस बितायो। साच कहूं सुन ले हो सबै, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। काहू लै पाहन पूज धरियो सिर, काहू लै लिंग गरे लटकायो। काहू लख्यो हर अवाची दिशा मह, काहू पछा को शीस निवायो। कोब तान को पूजत है, पस को मिर तान को पूजन तायो। कूर क्रिया जो सब ही जग, श्री भगवान को भेद न पायो। खूब

रात कारण धन संची है, भलके चलन होए। नानक नाल न चलई फिर पछतावा होए। महला दूजा। बद्दा चट्टी जो भरे, ना गुण ना उपकार, सेती खुशी सवारी है, नानक कारज सार। महला दूजा। मन हठ तरफ न जिपई,

मन तन सुख होई, गुरमुख सदा सलाही है, करता करे सो होई। जुग चारे सब भव थकी, किन कीमत हुई, सतगुर एक विखालिया, मन तन सुख हुई।

पौड़ी बिन सतगुरु किने न पायो, बिन सतगुरु किने न पाया। सतगुरु विचाप रखी होन कर प्रगटया सुनाया, सतगुरु मिले सदा मुक्त है जिन विचो मोह चुकाया।

पुस्तक संध्या बादं सिलपूज सुबगल समादं मुख झूठ विपोखण सारं त्रैपाल तिहाल विचारं गलमाला तिलक ललाटं दो धोती वस्त्र कपाटं।

पौड़ी। सबको तेरा तू सब सदा, तू सब ना रास, सब तुदै पासो मंग दे नित कर अरदास। जिस तू देहे तिस सब किच मिलै, इक ना दूर है पास। तुद बाजो थाओ को नाही, जिस पासो मंगी है मन वेखो को निरजास। सब तुदै नू सालाह दे दर गुरमुखा नो प्रगास। श्लोक महला तीजा। पंडित पढ़ पढ़ उच्चा कूकदा, माया मोहे प्यार अंतर ब्रह्म नची नहीं, मन मूरख गावार। दूजै पाए जगत प्रबोध दा, ना बूझै विचार। बिरथा जन्म गवाया मर जम्मै वारू वार। महला तीजा। जिनी सतगुर सेवया तिनी नाउ पाया, बूझो कर विचार। सदा शांत सुख मन वसै, चूकै कूक पुकार। आपै नो आप खाए मन निर्मल हुवै, गुर शब्दी विचार। नानक शब्द रत्ते से मुक्त है, हर जियो हित प्यार। पौड़ी। हर की सेवा सफल है, गुरमुख पावै थाए। जिस हर पावै तिस गुर मिलै, सो हर नाम त्याय। गुर शब्दी हर पाई है, हर पार लंघाए। मन हटकिनै न पायो पुछो वेदा जाए। नानक हर की सेवा सो करे, जिस लय हर लाए। श्लोक महला तीजा।

बिन नावै खिन मर जाया पौड़ी। जो मिलया हर दी बाण स्यों, सो सबनी दी बाणी मिलया। जिथै उह जाए तिथै उह सुरखरु, उस कै मुह डिठै सब पापी तरिया। उस अंतर नाम निदान है, नामु परवरिया। नाउ पूजी है नाउ मन्नी है, नाए किलविक सब हिरिया।

सच्चै शब्द सुभाय, अमृत नाम सद पुंचीऐ, गुरमुख कार कमाय, विण मन्नै जे होरी नाल लुजना, जासी जन्म गवाय, मन मुखी मन

रैन के राखी अदृष्ट अगोचर अलख निरंजन सो देखिया गुरमुख आखी। श्लोक महला तीजा। सतगुरु

सेवा सुरत कमावनी, जो हर भावै सो थाए पाए। पौड़ी हर हर नाम जपहु मन मेरे, जित सदा सुख होवै दिन राती। हर हर नाम जपहु मन मेरे, जित सिमरत सब किलविक पाप लहाती। हर हर नाम जपहु मन मेरे, जित दालद दुख भुख सब लह जाती। हर हर नाम जपहु मन मेरे, मुख गुरमुख प्रीत लगाती। जित मुख भाग लिखे

ज्ञान न आयो, मृतक है संसार, लख चौरासी फेर पया, मर जम्मे हुए खुआर। सतगुर की सेवा सो करे, जिसनो आप कराए सोए। सतगुर विच नाम निदान है, कर्म प्राप्त होए। सच रते गुरु शब्द स्यों, तिन सच्ची सदा लिव होए। नानक जिसनु मेले न विछुड़े, सहज सुमावै सोए। महला तीजा, सो भगवती जो भगवंत है जाने, गुर प्रसादी आप पछाने। तावत राखै इकत घर आने, जीवत मरै हर नाम वखाने। ऐसा भगवती उत्तम होए, नानक सच समावै सोए। महला तीजा, अंतर

जाए, बाहर मल धोवै मन की झूठ न जाए। सत संगत स्यों बात रचाए, अन दिन दुखिया दूजै भाई रचाए।

पास पौड़ी। सो ऐसा हर नाम त्याइए मन मेरे, जो सबना ऊपर हुक्म चलाए। सो ऐसा हर नाम जपिए मन मेरे, जो अंति अवसर ले चढ़ाए।

तीजा वेश करे को रूप कुलखणी मन खोटै कूड़ियार फिर कै भाणै ना चलै हुक्म करे गावार गुर कै भाणै जो चलै सब दुख निवारण हार लिखिया।

हर पौड़ी हर तेरी सब करहें उस्तत जिन फाथे काढ़िया हर तुदनों करै सब नमस्कार जिन पापै तेरा किया हर निमाणिया तू मान हर डाढ़ी हूं ते डाढ़िया हर अहंकारिया मार निवाए मन मुख मूड साधिया हर भगता दे वड्याई गरीब अनाथिया श्लोक महला तीजा सतगुर कै

चुन नरक कोर चालियन हर भगतानु दे प्यार कर अंग निस्तारियन। श्लोक महला पहला। को बुद्ध डूमनी कुद

जानै जे दिन दिन अवध कटत है। मोर मोर कर अधिक लाड धर, पेखत ही जमराउ हसै। ऐसा तै जग भरम लाया, कैसे बूझ है जब मोहया है माया। रहाओ कहत कब

इन विद भव सागर तरना। जा तिस भावै ता लागै भाऊ भरम भुलावा विचों जाए। उपजै सहज ज्ञान मत जागै गुर प्रसाद अंतर लिव लागै। इत संगत नाही मरना हुक्म पछाण ता खसमै मिलना। रहाउ दूजा श्री राग तरलोचन का माया मोह मन आग लड़ा प्राणी। जरा मरण भव विसर गया कुटंब देख बिगसह कमला ज्यों। पार कर जो है कपट नराग।

पाछ पछताना, निकटी देहे देख धुन उपजै, मान करत नहीं बुझै, लालच करै जीवन पद कारण, लोचन कछु न सूझै, थाका तेज उड़िया मन पंखी, घर आंगन न सुखाई, बैनी कहै सुनहो रे भगत हो, मरण मुक्त किन पाई, श्री राग तो ही मोही, मोही तो ही अंतर कैसा, कनक कटिक जल तरंग जैसा, जौ पै हम ना पाप करंता, अहे अनंता, पतत पावन नाम कैसे हुंता रहाओ, तुम जो नायक आछ हो अंतर जामी, प्रभ ते जन जानी जै, जन ते स्वामी, शरीर आराध है मोको बिचार देहू, रविदास समदल समझावै को।